0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
1: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।

0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेनजी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं। इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग शू और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शू शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that reforms are not a compulsion but a commitment and conviction for his government and that its policies are pro-people, pro-growth and pro-development. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi last evening, Mr. Modi said his government has created a clear roadmap for reforms, with the primary focus being on reforms at the governance level. He said India is undertaking next-generation reforms at the policy level to secure the country's future.
2: हमने reforms को लेकर एक clear roadmap बनाया। इस roadmap की प्रमुख दिशा रही है governance level के reforms हो। इसके लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सिर्फ regulation नहीं बदल रहे, हम regulation की पूरी philosophy बदल रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the global economic environment, saying that the weaponization of resources and growing mistrust were creating new challenges.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: तो भई मनचाही गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संचना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिकली परासिया, छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है।

0: विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवास से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।
1: मिल

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइशें आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और ब्रिजकांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरुशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन और दीपक

जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योति ताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं।
1: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाही गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की शाहूनगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआगंज अलीगढ़ से, मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम मुन्ना, महीन फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना, इंदीवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है। महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार, ये फरमाइश बीड़ शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू पहलवान की, महेंद्र सटकरकडे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौलका से और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन?
3: जीवनलाल जी हैं, रहते हैं क्या?
4: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखो तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
3: जीवनलाल जी आप ही हैं?
4: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ?
4: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
4: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ?
4: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: कब? जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो, कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ,
1: ये लीजिए।
0: हाँ, हाँ। अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी, वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। ओरा अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया? अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम, हा? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: तुम्हारा फादर, माय गॉड।

0: और ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता आओ लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो वो खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा, मना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
1: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो। मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को घसा कर लिए, उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है। मैं पागल नहीं हूँ।
0: ओरे बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ए, तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
1: मैं पागल नहीं,
0: इधर आ जाओ, तुमका मुर्दा है।
1: पागल नहीं हूँ।
0: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये कौन है?
0: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ,
2: लेकिन लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगते।
0: हाँ, नहीं लगता, पर हाय ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता। हा? पर हाय।
2: हाँ हाँ, लेकिन लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
1: मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो। मेरे बेटे को पकड़ो, उन्होंने बंद करा मुझे।
0: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी। घोष बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
0: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है।
2: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला आपने पिताजी?

0: पिताजी, पिताजी, ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी है इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं, क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या।
0: और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं, मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या, तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचिस।
2: जीवन, पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल पागल हो
0: गया हूं मैं पागल। मकान बेच कर दो मुझे पैसे, वरना रोक कर तुम अभी इस कबाब खाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़, छोड़ माचिस को।
0: नहीं,
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: छोड़ दे माचिस,
0: नहीं छोड़ूंगा। आग
2: लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। नीच बेहूदे, बाप से हाथापाई करता है, छोड़।

0: इसमें कहता हूँ।
1: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
0: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
1: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
0: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तुड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक कूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको, और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में, मेन मार्केट में ही दुकान है, और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
2: 15 लाख?
1: फिर जी बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे, अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ, 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
3: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से आमर आई है।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
3: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
4: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई है।
4: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
3: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो आदेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
3: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
1: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
2: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
1: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
3: अगर इस तरीके के मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
2: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
3: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
2: असंभव तो नहीं है?
3: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
2: वो नवजोत चिकित्सक? अच्छा अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है।
3: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। तू ठीक है ना?
2: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है देश बाबू?
3: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
1: क्या क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
3: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
2: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
3: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
2: खा चुके वो ये चूर्ण?
3: अरे खाना तो खाएंगे, बस

0: उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यास से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
1: क्या?
0: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
1: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
0: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
1: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
3: और क्या?
0: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
1: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
0: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
1: अच्छा? मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
0: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
4: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
1: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
0: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खो कर अफसोस ही क्या होगा।
4: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
5: अरे झूललाल बाबू, अभी गया नहीं आप? यहीं बैठा है।
4: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
6: बड़ी देर कर दी आपने आने में। संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
4: संपत,
1: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
1: अब हम बूढ़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे?
4: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
1: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
4: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
1: जी।
4: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
1: यानी एक और मुसीबत।
4: हाँ, एक और मतलब?
1: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
4: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
1: क्या बताऊँ, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
4: लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
1: हाँ, मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
4: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का उनका फैसला भी ठीक

0: ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
1: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
0: अरे नहीं नहीं, तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
1: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
0: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
1: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊंगा।
0: अच्छा अच्छा
1: वो भैया वो
0: हाँ? वो कुछ कहना चाहते हो?
1: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मतलब है कि?
0: अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
1: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया, वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
1: आकर...
2: जी बात सुनो जरा।
0: हाँ हाँ ठीक है भाई, संपत्त तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
1: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भैया।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते भाभी।
0: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
0: अरे ठीक ही कह रहा हूँ। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हा? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है, सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ हाँ, जब थी तब थी। इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
0: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो, ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे जी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
0: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेच कर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
3: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
0: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा, समझे?
3: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
0: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
3: बाबा ने? वो जो पागलखाने में बंद थे?
0: हाँ हाँ वही।
3: बाबा ने आत्महत्या की?
0: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
0: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
3: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है। महज 3 लाख से

0: मेरा बिजनेस शुरू हो
1: अच्छा?
0: जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
0: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
0: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
1: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
0: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
1: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
0: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
1: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे। खिलाओ।
0: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
1: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा, और तुम माँ बेटे को निकाल कर कहीं दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तों, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
0: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए हैं लगता।
1: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा वहां।
3: हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
1: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं।

जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिरास का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: आज के बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत आलोक गागड़ेकर जी विविध भारती के स्टूडियो में।
3: जी जी जी नमस्कार, धन्यवाद।
2: आलोक जी, रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो जब हमारी स्टूडियो में आते आते बातचीत हो रही थी तो बहुत सारी बातें सामने आई, तो मुझे रेडियो से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताइए जो आपके जीवन में घटित हुई हैं।
3: जी, यानी ये कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है बचपन से।
2: जी,
3: क्योंकि घर में तो टीवी भी था, कलरमैन टीवी था हमारे पास और सभी संसाधन थे, लेकिन मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी और वहाँ एक लकड़ी का रेडियो था।
2: वो किस जगह रहती थी?
3: वो हमारे अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद हमारा जो एक मोहल्ला है, जो हमारा गांव है छारा नगर गांव, तो वहाँ पर रहते थे। तो सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था और वही हमारा मॉर्निंग एक उठने का प्रण बनता था कि रेडियो शुरू हो गया, इसका मतलब सुबह हो गई है। अब रेडियो पे ये गाने चल रहे हैं, इसका मतलब दोपहर हो गई है। तो यानी कि जो रेडियो में भी बार बार कहा जाता है कि रेडियो विविध भारती जीवन का संगीत, तो सच में वो जीवन का संगीत बचपन से ही जुड़ा था। तो मैं बच्चा था, यानी 11-12

0: मैं एक 11 साल का लड़का रेडियो लेकर बाजार में घूम रहा है कि कोई इसे रिपेयर कर दे, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियो से वो जुड़ाव था कि जैसे एक मित्र आपका साथ छोड़ दे तो कैसा फील होता है, तो
1: कितनी प्यारी
0: वैसे।
1: बात है कि
0: जी
1: आप
0: जी
1: इतना
0: जी
1: ज्यादा जुड़े थे। तो फिर
0: जी
1: वो रेडियो सुधर पाया कि नहीं सुधर पाया?
0: वो रेडियो तो नहीं सुधर पाया, लेकिन इतना है कि नानी माँ और ये लोग इतना प्यार करते थे मुझसे कि उन्होंने फिर मुझे एक नया ट्रांजिस्टर रेडियो, जो उस वक्त मुझे अभी भी कीमत याद है कि 92 रुपीज़ में हमने खरीदा था, जो मेरे पास ही रहता था। और तब फिर धीरे धीरे समझ बनी, हम स्पोर्ट्स खेलते थे तो क्रिकेट रेडियो के अंदर क्रिकेट सुनना, यानी कि वो स्टेडियम में जो आनंद आता है उससे भी ज़्यादा आनंद आपको रेडियो पे सुनने का आता है, क्योंकि एक एक बॉल, एक एक बैट, एक एक खिलाड़ी की हरकत जो हमको बयां करते थे रेडियो पर, वो पूरा विजुअलाइजेशन जब सामने आया तो पता चला कि ये केवल मशीन का पुर्जा नहीं है, लेकिन ये तो एक ऐसा यंत्र है जो शायद मनुष्य के साथ बातें कर रहा है, यानी कि एक हमारा गिव एंड टेक होता था। ये फिर आगे चल की बातें हैं, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी जुड़ा तो वहाँ पर भी रेडियो सुनते थे हम, क्योंकि एक FM मिल ही जाता था कहीं पे भी, है ना। तो वहाँ पर भी ऐसे लगता था कि आज मैं दुखी हूँ ये रेडियो को कैसे पता चल गया,
1: अरे वाह वाह वाह,
0: आज मेरी मेरे मित्र के साथ अनबन हुई ये रेडियो को कैसे पता चल गया, और
1: वाह।
0: उन्होंने आज वही गीत क्यों चला दिया कि दोस्त दोस्त ना रहा या प्यार प्यार ना रहा या इस तरीके की। तो जिंदगी के साथ आपको साहित्य, संगीत और अभिनय या मनोरंजन, इन सबको जोड़ने वाला अगर कोई यंत्र है इस सृष्टि पे तो वो रेडियो है। और पूरी पृथ्वी में मुझे लगता है कि हमारा देश का, भारत देश का जो विविध भारती और आकाशवाणी रेडियो है, ये विशिष्ट प्रकार का रेडियो है। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं आज इस मंच पर बैठा हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यानी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है।
1: क्या बात है। तो ये आपका रेडियो से इतना ज्यादा जुड़ाव रहा,
0: जी
1: विविध
0: जी जी
1: भारती से इतना जुड़ाव रहा। बचपन में अभिनय की ओर रुझान कब हुआ था आपका?
0: अभिनय का ऐसा था कि स्कूल के दिनों में जब टीचर्स डे सेलिब्रेट होता था तो उसमें मुझे एक बार टीचर ने कहा कि आपको टीचर बनना है, क्योंकि
1: जी
0: उसमें हम देखते हैं कि क्या एटीट्यूड है, कितना डेवलपमेंट आया है। तो मेरे लिए यही था कि कौन सा विषय, तो सबसे सुंदर मजबूत टिकाऊ विषय था मेरे लिए हिंदी, कि इससे अच्छा विषय क्या हो सकता है। तो मैंने हिंदी विषय के लिए पार्ट लिया कि मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा, और मुझे अभी तक शायद याद है कि मैं मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी को लेकर बात करने वाला था जो हमारे कक्षा में थी। तो वहाँ टीचर्स डे में टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यहाँ तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक, जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
1: जी।
0: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
1: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
0: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी, यानी कि ये जर्नी चली, कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था, सीख रहा था, सीख रहा था, क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं, हाँ, कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की, आप जो कुछ बोलोगे वो ही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय, यानी कि 2-2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप में 11-15 हज़ार लोगों का एप्लीकेशन वहाँ उस वक्त गया था,
1: हाँ, मैं
0: और
1: यही सोच रहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना इतना आसान नहीं रह गया है। तो आप किस बरस गए थे और कितना कड़ा मुकाबला था?
0: कड़ा मुकाबला तो बेशक था, और मैं 2003 में मैंने अप्लाई किया था, उससे पहले मैंने 2002 में अप्लाई किया और मैं फेल हुआ।
1: ओ,
0: तो ये भी एक जिंदगी का सबक है
1: तो बहुत
0: कि
1: दुखी हुए होंगे।
0: बहुत दुखी हो गया था, मुझे ऐसे लगा था कि पता नहीं मैं जिंदगी में अभी कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा।

0: रखूंगा। मैं हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक डॉक्टर देवेंद्र राज अंकुर जी, जिन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता है, आप थिएटर करते रहो, जुड़ते रहो। जब अगर आप एनएसडी में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई, आप कहीं और जगह भी। लेकिन बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात है। यहाँ रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहाँ बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे। तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूँ, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर

0: जी कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप कैसे सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे? तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो। और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी, जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो
1: लगातार, उनका तो
0: गुजरात।
1: बहुत अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छे प्लेस अभी भी चले आ रहे हैं।
0: हाँ, अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
1: जी,
0: भाई है।
1: जी
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये, जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह,
0: तीनों 3 वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला है।
1: वाह वाह।
0: तो 99 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तुत्तु तुत्तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था, जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
1: मजबूत
0: वैसी,
1: है।
0: हाँ, इंकलाबी कलम रही
1: तो ये
0: शुरुआत
1: सब
0: से।
1: उन्होंने लिखे।
0: उन्होंने ही लिखे दो चौक सही नगर वस्तु तू,
1: ओ
0: और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहाँ थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
1: NSD में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो NSD की कुछ यादें हैं और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहली हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से है, तो आपको आसामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, MP का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे,
1: ओहो
0: तो वो 3rd ईयर में थे और हम 1st ईयर में थे। तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में, तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ, भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीज़ों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाए वो तो
0: हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो
1: फिर
0: वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है, वो ये है कि हम लोग गए थे KN पणिकर जी के थिएटर में केरला। तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला
1: बिल्कुल
0: का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहाँ पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में, आप संस्कृत नाटक की जो एक लय होती है, जिसमें फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहाँ प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ, बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहाँ लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड। यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है।
1: तो बिल्कुल,
0: हमारे सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे।
1: अच्छा।
0: वहां पर वहां थांगटा सीख कर आए। हम केरला गए तो हम वहां कल्लरी पैट्टम सीख कर आए, तो आज भी वो कल्लरी पैट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूँ अपना।
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है,
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहाँ से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है।
1: वाह,
0: रोज
1: सही बात है।
0: रोज, यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास, अब लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है। तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी। तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे, तो और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता। तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी।
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर?
0: जी, धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है।
1: हाँ।
0: जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आज भी अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है,
1: बिल्कुल
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी।
1: वाह वाह वाह।
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते हैं ये गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे।

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था।
0: अच्छा।
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो बहुत
0: तो एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ जिसका नाम रुक्ष्मणी है और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है।
0: तो और वही ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुके
1: हैं। क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे अगर आपकी सहूलियत के हिसाब

0: सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया, अब यहाँ क्या करेंगे। तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया, और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरी पाड़ा, मलाड़ से आगरी पाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि वो एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था, और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपये पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपये, और घर का किराया ये सब मिला के 5-6 हज़ार में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में काम किया, और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया।
1: जी जी
0: और
1: जी।
0: फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों
0: जी,
1: को
0: जी।
1: वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे, और वही एनएसडी जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है,
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूँ। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो कुछ लोगों को वो एनजीओ ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी, तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ ओ ओ।
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया, और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया, तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर पाए,
0: अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग
0: ये थिएटर एज अ थेरेपी। तो बच्चे हंसते थे, और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया, जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा, और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा है, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया कि लोगों से मिलना।
1: वो एक प्रोसेस है कि वो
0: एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: नहीं थे,
1: अपने फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: पड़ता था। जी जी जी मुझे आज भी याद

0: है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जूम है
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे,
1: जी
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे एनएसडी से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था, क्योंकि वहाँ वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसे निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो पांचों पांच एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी,
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक के। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त दोबारा दोबारा, तो उसमें हमारे एनएसडी के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था। तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
1: बड़ौदा चले,
0: बड़ौदा चले गए वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया। चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहाँ तक हो जाए। फिर वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन।
1: ओह,
0: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है। तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी टशन। ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ
1: और ये पहली फिल्म बनी।
0: पहली फिल्म बनी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। अनिल कपूर
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ, अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय कृष्णा आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी एनएसडी में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे। तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए। तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको कि बताओ तो सही आपको आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं।
1: ओके।
0: अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था।
1: ओ।
0: तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। तो मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंट आउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ वो डायलॉग, कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहाँ क्या कर रही। लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा। वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को
1: पर्दे पर देखना है,
0: 70mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी।
1: वाह,
0: मराठा मंदिर अपने आप में एक
1: ऐतिहासिक थिएटर,
0: ऐतिहासिक थिएटर है। तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह। और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा?
0: हाँ, फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत।

0: है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा
0: हाँ, एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी, राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे एनएसडी रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल, बजरंगी भाईजान में भी आपने काम किया।
0: जी जी जी, बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था, बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन। जी, बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया, उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि तीन चार लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था, बोला हम बोल लेंगे सर। अब वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था?
0: हाँ, डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे। और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था
1: अरे बाप रे,
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ,
1: तुम हाथ करना,
0: हाथ करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे, बड़ोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो, और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है, वो कभी आप आज भी वो फिल्म सेटमैक्स पे चलती है तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर, सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई, हाँ हाँ, कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का एक सिग्नेचर बनाया था।
1: जी, जी।
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके,
0: प्रेम रतन धन पायो, बिग बॉस,
1: हाँ,
0: और बजरंगी भाईजान,
1: ओके,
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये करजत में,
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने कोवा एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान, हाँ, तो सलमान भाई से बोले अच्छा है, हाँ गुड गुड, ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने रखता है। जी, एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो कौन सा गाना होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो झोली मेरी।
1: क्या बात, अदनान सामी, सुनते हैं अदनान सामी की आवाज़ है। जी, जी, जी, जी।

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई। टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ,
0: ये बातें
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी,
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा, टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले
0: जाते। अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी,
1: तो ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते हैं।
0: और बहुत पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होते हैं,
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी, तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो

0: फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था
0: जी।
1: बिफोर BC में हम, बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहाँ से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है। हम ही कमज़ोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमज़ोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है। आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा।
0: हाँ,
1: तो कैसे
0: ऑक्सीजन? हमेशा ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
1: हाँ, हमेशा कहा जाता है। तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहाँ पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना कि थिएटर घर घर तक पहुँचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहम अलकाजी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य हैं, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबक की आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है। जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये,
0: अंकुर जी ने,
1: अंकुर जी की विधा है ये
0: जी।
1: अंकुर जी, महेश आनंद जी, लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको। हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास कहानी है और मंच है
0: बस,
1: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी के हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे। कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
0: सेम का सेम,
1: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
0: बिल्कुल।
1: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
0: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
1: मैंने गुजराती थिएटर किया। मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको।
0: अच्छा,
1: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो तो
0: घुमक्कड़। मराठी का एक प्रकार है?
1: नहीं, ये
0: गुजराती का एक प्रकार है।
1: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
0: अच्छा,
1: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
0: अरे बाबा,
1: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
0: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
1: नहीं नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माय गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतू बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांझा सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना। एकदम डिफरेंट,
0: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
1: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले लिया,
0: मिक्स है,
1: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ
0: जी।
1: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
0: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि NSD जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल
0: तो उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।

0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यावसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है,
1: हाँ
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं, है
1: हाँ
0: ना।
1: और मुंबई शहर आपको पीसता
0: हाँ,
1: है।
0: पीसता है, जलना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है,
1: जी
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं। तो उन चीज़ों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है। जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं
1: बिल्कुल
0: अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। चलते चलते एक गाने की फरमाइश है
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे,
1: जी।
0: और रेणु जी
1: वाह
0: की
1: वाह,
0: कहानी पर उन्होंने जो
1: तीसरी
0: फिल्म
1: कसम बनाई।
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप एक सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या
1: वाह
0: तेरे
1: वाह
0: मन में
1: वाह, जरूर ये गाना सुनाते हैं
0: जी।
1: आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना समय देने के लिए।
1: जी जी जी, धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है। और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे, जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
0: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम
1: की। संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
0: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकननी की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया और प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामिन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 साल बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया संस्थान पीजे मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। रिपोर्ट में इश्निंदा कानून के दुरुपयोग का भी उल्लेख है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी

0: वंदे मातरम का यशोगान करेगा। वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे। वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की। और खेलों में BWF विश्व चैंपियनशिप में के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से जारी है। महिला डबल्स के पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच अम्स्टरडैम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पञ्चदश लक्ष रोटि रूप्यकाणां निर्यातः अपि जातः चतुर्दश लक्षाधिकानि वृत्त्यवसराणि अपि सृजितानि।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: श्री मोदी भारत देशः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य आशा विकासस्य च उज्ज्वल स्थानं विद्यते इति अपि प्रतिपादितवान्।
1: दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: सर्वकारेण अद्य क्लोरफिनिरामाइन मेलिएट फिनाइले फ्राइन हाइड्रोक्लोराइड इत्येतयोः घटनानां युक्तानां सर्वासां नियत मात्रा संयोजन औषधीनां निर्माणे विक्रयणे वितरणे च प्रतिबन्धाः सन्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन एका अधिसूचना प्रदर्शिता यस्यां चतुर्वर्षेभ्यः येषु बालेषु एतासां औषधीनां प्रयोगः न करणीयः इति अपि स्पष्टं कृतम्। बालकानां स्वास्थ्य सुरक्षायाः विषये एषः महत्वपूर्णः निर्णयः विद्यते। प्रशासनेन इदम् अपि कथितं यत् एतादृशानां संयोजनानां प्रयोगः बालकेषु हानिकारकः भवितुम् अर्हति। युवा कार्य क्रीडा मन्त्रालयस्य केन्द्रीय मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया ब्रिक्स देशानां मन्त्रिभिः वरिष्ठ नेतृभिश्च साकम् अद्य आन्ध्र प्रदेशस्य विशाखापट्टनम नगरस्य समीपे स्थितस्य ऐतिहासिकस्य थोटला कोंडा क्षेत्रे प्राचीन बौद्ध अवशेषाणां स्तूपानां ध्यान केन्द्राणां पाकशालानां च दर्शनं कृतवान्। डॉ मांडविया एक पेड़ मां के नाम इति अभियानस्य अन्तर्गतं थोटला कोंडा क्षेत्रे एकं वृक्षारोपणम् अपि कृतवान्। इयं यात्रा प्रवर्तमान वर्षस्य ब्रिक्स अध्यक्षता इत्यस्य कार्यक्रमाणां भागो विद्यते। अद्य सायंकाले विशाखापत्तनम नगरे ब्रिक्स युवा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोज्यते। डॉ मनसुख मांडविया इत्यनेन साकं शिक्षा कौशल विकासः उद्यमिता कल्याण संपोषण विकासः इत्येतेषु विषयेषु सहयोग सुदृढीकरणस्य उपायानां विषये चर्चां करिष्यति। सम्मेलनस्य एते एव प्रमुखाः विषयाः विद्यन्ते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। द्वाविंशतिः भारतीय नाविकैः सह वैदेशीय ध्वजयुक्तयोः वाणिज्यिक नौकायानयोः अपहरणस्य विषये भारतं सोमालिया देशस्य अधिकारिणां समक्षम् अवोचत्। एमटीसीबु नौकायां 16 भारतीय नाविकैः एमवी लुतुफ नौकायां 6 भारतीय नाविकैः च सह एतयोः नौकायानयोः येमेन सोमालिया देशयोः पृथक् पृथक् घटनायां सशस्त्र समुद्रीय जलदस्युभिः अपहृताः। केन्यादेशे भारतीय उच्च आयोगः सामाजिक अन्तर्जालीय पटले अवदत् यत् सर्वे भारतीयाः नाविकाः सुरक्षिताः सन्ति इति कथ्यते। सः अवदत् यत् भारतं स्वस्य सामुद्रिक समुदायस्य सुरक्षायै कल्याणाय च सर्वाधिकं महत्वं प्रददाति। मिशन इत्यनेन उक्तं यत् ते सोमालिया देशस्य सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह प्रकरणं विनिमयी कृतवन्तः।

दूरदर्शन वाहिन्यां कृते केन्द्रीय सर्वकारेण विज्ञापन प्रसारणस्य अधिकतम अवधि समापिता। निर्णयस्य अस्य प्रभावः केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम चतुर्नवत्युत्तर नवदशतम राजपत्रस्य अधिसूचनायाः प्रशासनेन साकं परिलक्ष्यते। पूर्वं सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे आगतानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां नियमानां पुनः समीक्षा आवश्यकी वर्तते। अद्य भारतीय जनता पार्टी इति दलेन वंदे मातरम इत्यस्य ऐतिहासिक रिक्त संरक्षणस्य विषये एकः प्रस्तावः पारितः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय संदेशे भाजपा दलीय अध्यक्षः नितिन नवीनः प्रोक्तवान् यत् दलं केवलं प्रथम श्लोकद्वयं गायन इत्यस्य कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य विरोधः करोति। BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां भारतीय महिला डबल्स युग्मस्य त्रिसा जाली गायत्री गोपीचंदयोः तथा चीन देशस्य लियू शेंगशू टेन निंग इत्येतयोः मध्ये उपान्त्यचक्रीय स्पर्धा सम्प्रति नवदिल्ल्यां प्रचलति। इति वार्ताः।

0: ये बानिता डांस कर रहे
1: हैं।
2: अर्जुना ये मी
0: आयोग का वनिता चक्कथन चूसे दाका ने विड़ा रेन यात्रा मनुवाड़ी
2: यात्रा

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे से समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना, बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहाँ लोग उपस्थित रहे तो आप वहाँ आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुँचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा

0: सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकमा में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाले पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एम. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था

0: अपने मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण, असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारूभोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया हुडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैंग निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक

0: समाधान तक की यात्रा। श्रोताओ, अगस्त का महीना हमारे लिए स्वतंत्रता, संकल्प और नव निर्माण का संदेश लेकर आता है। आज जब हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तब ये आवश्यक है कि वैज्ञानिक सोच केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और समाज का अभिन्न हिस्सा बने। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर जैव प्रौद्योगिकी तक, विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। इन उपलब्धियों के साथ नई संभावनाएं तो जन्म ले ही रही हैं, लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं जल सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज पहले से कहीं अधिक जरूरी है। आसमान को देखकर कभी न कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, इन तारों के पार क्या है। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचाया, और इसी माह अगस्त की 23 तारीख को हम मनाते हैं अंतरिक्ष दिवस, जो कि केवल भारत के नहीं विश्व के समस्त वैज्ञानिक हलकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस अंक में हमारा प्रयास है कि विज्ञान के जटिल विषयों को सरल, सहज और रोचक भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। हमारा विश्वास है कि वैज्ञानिक चेतना का विस्तार ही एक जागरूक, तर्कशील और आत्मनिर्भर समाज की मजबूत नींव है। रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों को लेकर महानगरों तक पहुंचती है, इसलिए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आइए सवाल पूछें, तथ्यों को परखें और अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, क्योंकि विज्ञान केवल भविष्य की खोज नहीं बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण का माध्यम भी है। आज की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका में हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर शेखर सी मांडे। हम आपको सुनवाएंगे एक और बातचीत, रोबोटिक्स और कृत्रिम मानव, हमारे कृत्रिम पितरू और भविष्य की संभावनाएं। इसमें प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर रविंद्र धर। एक और भेंटवार्ता श्रोताओं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, चुनौतियां, संभावनाएं, नैतिकता और हमारी सीमाएं। इस साक्षात्कार में प्रतिभागी होंगे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य की तकनीकी क्रांति, ये विषय होगा एक और बातचीत का। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला। इसके अलावा हम बातें करेंगे विज्ञान जगत की और अगस्त माह क्यों विशेष है हमारे संपूर्ण विज्ञान जगत के लिए, इस पर भी बातें करेंगे और कुछ विज्ञान समाचार। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं हमारी विशेष बातचीत, 150 सालों की वैज्ञानिक विरासत। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर शेखर सी मांडे जी, वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकेडमी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ से उत्पन्न हुए और वैज्ञानिक यहाँ से जुड़े रहे, और अभी जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ साइंस की, तो भारत में ये क्यों जरूरी हो जाता है, खास करके हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए।
2: जैसा कि आप जानते हैं 18वीं और 19वीं सदी में हमारे देश पर प्रौद्योगिकियों का राज था, उसी वक्त ये भी हुआ था पूरे विश्व में कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के माध्यम से हर जगह एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति हम जिसे कहते हैं, वो उसी समय पे आई थी। लेकिन जो कि हम लोगों पर अंग्रेजों का राज था, हमारे देश को ज्यादातर बड़े स्तर पे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की प्रगति में वंचित किया गया था। और ये जानते हुए हमारे देश में कई सारे ऐसे प्रमुख व्यक्तियां जो थी, उन्हें काफी दुख हो रहा था कि ऐसा ना हो कि भारत पूरे दुनिया से पिछड़ जाए, क्योंकि हमें वंचित किया गया है विज्ञान की प्रगति से। उस समय जैसे कि आप शायद जानते हो कि बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसे रिलायंस सा कहते हैं बंगाल का, उसमें काफी सारी प्रमुख व्यक्तियों को उभर कर आई थी हमारे देश के सामने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, सब लोग एक बंगाल रिलायंस जो था उसके प्रमुख व्यक्ति थे। उसी में एक अग्रेसर नाम जो है वो डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का है, और महेंद्रलाल सरकार जी रामकृष्ण परमहंस जी के निजी चिकित्सक थे, मेडिकल डॉक्टर थे। और महेंद्रलाल सरकार जी के मन में भावना थी कि हमारे देश में भी विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी संस्थाएं होना जरूरी है जहाँ पे कोई भी आके अपने मन में जो कोई प्रश्न है अपने सृष्टि के बारे में या कुछ भी, और उसके लिए विज्ञान का सहारा लेते हुए उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी स्वदेशी भावना से महेंद्रलाल सरकार जी ने 29 जुलाई 1876 में एक संस्थान का स्थापन किया जिसे हम लोग इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 1876 और आज तो 150 वर्ष हाल ही में इस संस्थान के पूरे हुए हैं, और बहुत ही गौरवशाली समय यह रहा है भारत के इतिहास में 150 वर्षों का।
1: निश्चित रूप से, क्योंकि जब ये संस्थान बनाया गया था तो इसे कहा गया था कि ये भारतीयों द्वारा बनाया हुआ एक ऐसा शोध संस्थान है जो आधुनिक विज्ञान की खेती यानी कि संवर्धन

0: मौलिक अनुसंधान के लिए बनाया गया है और उसके प्रतिफल में रमन प्रभाव दिखाई दिया दुनिया को, और जिसके लिए भारत के प्रथम वैज्ञानिक सर सी वी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो रमन इफेक्ट का जब उन्होंने पता किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो उस समय बहुत कम संसाधनों से इस पर खोज की गई थी विश्व के अन्य देशों के जो लेबोरेटरी थी उसकी अपेक्षा, और बाद में इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए इस खोज के बाद।
1: जैसे कि आपने सही कहा, साइंस का जो सपोर्ट था, इंस्ट्रूमेंट्स थे, इतना सपोर्ट भारत में नहीं था, लेकिन रमन जी ने जी डी बिरला जी को एक पत्र लिखा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो उसमें से मैं ये इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा मैं भारत के लिए नोबेल पारितोषिक ले आऊंगा। और जी डी बिरला जी ने रमन पे विश्वास किया और सी वी रमन जी को उन्होंने वो पैसा दिया, रमन जी ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसके ऊपर रमन जी को नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्गामी परिणाम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमन इफेक्ट आजकल अगर देखे तो उसके उपरांत जो टेक्नोलॉजी बनी है रमन इफेक्ट को लेके काफी सारी है। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमारा सामान जो स्क्रीन होता है सिक्योरिटी में, वहाँ पे रमन इफेक्ट से देखते हैं कि सामान में क्या सही में असली चीज है या कुछ गलत चीज हम तो लेने जा रहे हैं साथ में,
0: स्कैटरिंग।
1: तो वो रमन इफेक्ट का काफी हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन वो रमन के प्रभाव के आधारित ही है सब कुछ।
0: प्रोफेसर मांडे, क्योंकि आप भी संक्रामक रोगों खास करके टीबी के अनुसंधान कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस तरह की जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि जो अगर प्राथमिकताओं के आधार पर काम करने की आवश्यकता है, तो विज्ञान अनुसंधान किस तरह से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक योगदान दे सकता है?
1: काफी सारे ऐसे रोग महामारी हमारे सामने में है जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो पहुंच सकती है, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो ऐसे फैलती नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती नहीं है, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ये फैलती नहीं है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलते हैं, जैसे मलेरिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो या फ्लू हो, अगर एक आदमी पीड़ित हो तो उसके अगल बगल में बाकी लोगों को भी वो हो सकता है। और भारत में कई वर्षों में ऐसा देखा गया है कि भारत ने काफी बड़े स्तर पर काम करके कई सारे ऐसे रोगों को बिल्कुल यहाँ से हटा दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अब पोलियो भारत में नहीं रहा, 2014 में भारत ने अपने आप को पोलियो मुक्त देश कहलवाया था, वैसे ही आज के दिन हम लोग करीबन बहुत पास आए हुए हैं, जिसे हम लोग काला आजार से हम लोग मुक्त हो गए ऐसा मानते हैं। एक हमारे आंखों में बीमारी होती है जिसे ट्रेकोमाइटिस कहते हैं, उससे भी हम लोग मुक्त होने में है। और अगर देखी जाए तो मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी भी काफी स्तर पर गए 10-15 वर्ष में बहुत कम हुई है। तो ये भारत के विज्ञान की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि काफी सारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो कम होते जा रहे हैं भारत में, और इसमें विज्ञान और तंत्रज्ञान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
0: अंत में क्या संदेश देंगे आकाशवाणी के माध्यम से?
1: मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं को कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आज तक हम लोग हमारे प्रकृति के बारे में, निसर्ग के बारे में, सृष्टि के बारे में जो जानते नहीं है, ऐसे कोई प्रिंसिपल हो, लॉ हो, और अगर उसकी खोज करने की हमारे मन में अगर जिज्ञासा हो, और अगर हम विज्ञान के मार्फत उस जिज्ञासा को उसका उत्तर खोजने की अगर कोशिश करें, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
0: प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो की विभागाध्यक्ष है मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्रोताओं नमस्कार, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, विकास की ये दौड़, ये हमको कहाँ तक लेकर के जाएगा, किस तरह से हमको, संसार को, मानवता को प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि अध्यक्ष हैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका प्रयागराज आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
3: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यौन आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेंद्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे हो गए आंख, नाक, कान, टच भी कर सकते हैं हाथ से, वो भी हो गया, ये सेंसिंग का काम करते हैं। तो हमारे आर्टिफिशियल जो रोबोटिक्स होंगे, उसमें सेंसर होना चाहिए, जिससे हम आसपास की प्रॉब्लम

0: को सेंस कर सकें। सेंसर्स के साथ साथ एक्चुएटर्स होना चाहिए। हमारे हाथ, हमारे पैर, ये सब एक्चुएटर्स हैं जिनसे हम काम करते हैं। तो जब सेंस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि क्या करना है। ठंड लग रही है तो गर्म जगह पे जाना है, गर्म लग रही है तो ठंडी जगह पे जाना है। अब सेंसर ने जो सेंस किया उसको कम्युनिकेट करना है एक्चुएटर को और उचित निर्णय भी लेना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
1: अपनी भाषा में जिसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं? ये इतना आसान है क्या?
0: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
0: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहाँ पे।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविंद्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का आनंद करिए, जो विदेशों में होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविंद्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। आइए इस कार्यक्रम में अब आगे आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसे विषय पर जिसने मानव को दो कदम आगे खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग की। क्या है इसमें चुनौतियाँ, क्या है संभावनाएं और क्या है हमारी सीमाएं, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो कि लाइफ साइंसेज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
0: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बहुत सरल भाषा में बताइए कि ये जीन एडिटिंग क्या है और किसी जीव के डीएनए में कैसे बदलाव कर सकते हैं।
2: हर जीवाणु या हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बना हुआ है और उस सेल के अंदर एक अनुवांशिक तत्व जिसे हम डीएनए भी बोलते हैं वो होता है। डीएनए जो है वो हर अलग अलग साइज का हो सकता है ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जो भी जीवाणु की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो डीएनए का साइज जो है ह्यूमन जीनोम का करीब 3 बिलियन बेसेस का है। 3 बिलियन बेसेस का मतलब ये है कि अगर आप एक पेज पे अल्फाबेट्स लिख रहे हैं और 3000 अल्फाबेट्स अगर एक पेज पे आप लिख पा रहे हैं तो आप उसकी अगर किताब बनाते हैं तो करीब 1 मिलियन पेजेस या 10 लाख पेजेस की वो बुक बनेगी। तो इतना बड़ा जीनोम होता है ह्यूमन का। अलग अलग जीवाणुओं का अलग अलग जो है तरह का जीनोम हो सकता है। डीएनए जो है कुल 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस से बना है, एडेनिन, थाइमिडिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यही 4 तरह के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनका एक सीक्वेंस जो है वो जीनोम बनाता है किसी भी जीव का। ये जीनोम जो है वो

0: कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स है, किसी भी जीव के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को हम जीनोम बोलते हैं। तो अब इसमें हमें समझ पाना कि हाँ कौन सा जीन कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है बहुत मुश्किल है, और केवल ATGC से कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन जो सेल है वो इससे एक सेंस बना लेता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में भी कहीं कॉमा कहीं फुल स्टॉप लगे हुए हैं, वो कॉमा फुल स्टॉप डिसाइड करते हैं कि कौन सा जीन जो है कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, और हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है और वो जो है उस सेल के लिए काम करते हैं। जब हम बात करते हैं एडिटिंग की, तो उस किताब में से कोई एक लेटर आपको अगर हटाना है तो मूलतः जो है हम जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग में हम यही करते हैं।
1: क्या एक लेटर हटा करके पूरी किताब का मतलब बदल सकता है?
0: हाँ, एक लेटर भी कभी कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही ये लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरह का प्रोटीन बनाएगा वो डिसाइड करता है। अगर एक लेटर भी चेंज होता है तो उस प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे उस प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है।
1: कौन सी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज जीन एडिटिंग के माध्यम से किया जा सकता है?
0: देखिए, जीन एडिटिंग यूज करके आप बहुत तरह के असाध्य रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसमें हीमोफीलिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसी जीन के खराब होने की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है जीन एडिटिंग यूज करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी को भी जो है जीन एडिटिंग से ठीक किया जा सकता है। और जीन एडिटिंग से केवल बीमारियां ही नहीं, नए नए तरह के फसल भी तैयार किए जा सकते हैं, केवल हेल्थ के ही फील्ड में नहीं, इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर और बहुत अलग अलग तरह की फील्ड्स में भी जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: प्रोफेसर, हम बात कर रहे हैं जीन की गड़बड़ियों के ऊपर, जो आप सुधारते हैं जिनको, ये होती कैसे है?
0: देखिए, दो तरह के ये चेंजेस होते हैं। एक तो ये चेंजेस जो है फैमिली में ही है, जैसे कि आपने रॉयल फैमिलीज के बारे में सुना होगा इंग्लैंड की, कि उसमें एक हीमोफीलिया करके एक इनहेरिटेड डिजीज है, जिसमें कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो क्लॉट नहीं करता है। तो ये फैमिली में ही चल रहा है वो। तो ऐसे भी ये चेंजेस हो सकते हैं, जो बॉडी है उसमें जो सेल्स है वो भी डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवीजन में भी जो है बहुत तरह के एरर्स होते हैं, क्योंकि डिवीजन में आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन सीक्वेंस है, इन 3 बिलियन सीक्वेंस को जब डिवीजन हो रहा है तो जो डॉटर सेल बन रही है उसमें वो एग्जैक्टली कॉपी होना चाहिए वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवाइड हो रही है तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो कभी कभी उसमें भी एरर आ सकता है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी सेल के पास पूरा तंत्र होता है, रिपेयर मैकेनिज्म। लेकिन मान लीजिए उस गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कि एक सेल ऐसी बन गई जो कि खराब है, पहले से उसमें चेंज आ गया। तो अब वो चेंज अगर गड़बड़ चेंज है, किसी ऐसी जगह हुआ है जो कि किसी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैंसर जो है मूलतः ऐसे ही शुरू होता है बहुत सारे केसेस में, कि किसी ऐसे इंपॉर्टेंट जीन में चेंज हुआ जो कि जरूरी था कि वो सही रहे वो जीन, अब वो जीन खराब होने की वजह से जो है वो सेल कैंसरस होती गई। अब ये भी जो है ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ये चेंज हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर समीर श्रीवास्तव, जो जानकारी दे रहे थे जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग डीन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक CPU होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक UPS होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं, और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्या सामान्य जो हमारे

0: कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे।
1: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
2: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
1: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
2: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
2: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
1: बिल्कुल,
2: हम
1: बिल्कुल।
2: इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
1: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
2: बिल्कुल। तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल, जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। आइए अब बातें करते हैं विज्ञान जगत की और विज्ञान समाचारों की। अगस्त माह में ऐसे कौन से विशिष्ट वैज्ञानिक व्यक्तित्व थे जो जन्मे, जो दिवंगत हुए, और प्रमुख वैज्ञानिक घटनाएं?
3: श्रोताओं, अगस्त 2026 में भारत और विश्व से विज्ञान की दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रगति पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। भारत से भारतीय वैज्ञानिकों ने बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की असामान्य रूप से अधिक मात्रा वाली परत का पता लगाया। ये परत एक दिन से अधिक समय तक बनी रही। अध्ययन के अनुसार इसका संबंध ओजोन समृद्ध हवा के क्षैतिज परिवहन और नीचे की ओर वायुमंडल गति से था। इसमें एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंसेस, नैनीताल के स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार सहित रडार, मौसम गुब्बारों, उपग्रहों और वायुमंडलीय मॉडलों का प्रयोग किया गया। अगली खबर न्यूक्लिक एसिड रिसर्च में प्रकाशित। भारत में वैज्ञानिकों ने ACSC-END नाम का मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन डेटा से कैंसर स्टेम लाइक सेल्स की अवस्थाओं की पहचान में मदद करता है। 25,000 से अधिक ट्यूमर प्रोफाइल्स के विश्लेषण में इन कोशिकाओं की अधिक उपस्थिति को कम डिजीज फ्री सर्वाइवल,

0: रिकरेंस और इम्यूनोथेरेपी के कमजोर रिस्पांस से जोड़ा गया। ये एआई स्वयं कैंसर का उपचार नहीं बल्कि जीनोमिक डेटासेट्स में महत्वपूर्ण जैविक संकेतों की पहचान का माध्यम है। ये प्रिसिशन मेडिसिन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विश्व से बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने MOMBH1 नाम की अत्यंत दूरस्थ वस्तु का अध्ययन किया जिसका प्रकाश उस समय का है जब ब्रह्मांड लगभग 66 करोड़ वर्ष पुराना था। इसके केंद्र में घने गैस आवरण से घिरे एक बहुत बड़े ब्लैक होल के संकेत मिले हैं। ये जानकारी ब्रह्मांड में विशाल ब्लैक होल्स के निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो विज्ञान जगत की इन खबरों में कहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कभी जीनोमिक एनालिसिस है, कहीं सूर्य और स्पेस वेदर का अध्ययन तो कहीं ब्रह्मांड के आरंभिक ब्लैक होल्स। विज्ञान की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, हर नई खोज हमारी जानकारी बढ़ाती है और नए प्रश्न भी सामने लाती है। अब अगस्त माह से जुड़े उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनके कार्यों ने विज्ञान की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। 2 अगस्त 1861 को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के अग्रदूतों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी। 7 अगस्त 1925 को M.S. स्वामीनाथन का जन्म हुआ। प्लांट जेनेटिक्स और क्रॉप ब्रीडिंग में उनके कार्यों ने भारत की हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को वैज्ञानिक आधार दिया। बाद में उन्होंने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पर भी काम किया। इनके योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। 8 अगस्त 1902 को पॉल डिराक का जन्म हुआ। उनकी डिराक इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी को जोड़ने तथा एंटी मैटर की सैद्धांतिक संभावना समझने का मार्ग दिया। 1933 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके सम्मान में दिए जाने वाला डायरेक्ट मेडल भी सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है और हाल ही में वर्ष 2026 का ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत के प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एवं IIT कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को सांख्यिकीय भौतिकी में उनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 1919 को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में उनका अग्रणी स्थान है। उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को संचार, मौसम, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास से जोड़ने की दूर दृष्टि प्रदान की और इनको भी भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो कि उनको मरणोपरांत दिया गया उससे सम्मानित किया गया। 21 अगस्त 1995 को महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर का देहावसान हुआ। तारों की संरचना और विकास पर उनके मौलिक कार्य तथा चंद्रशेखर लिमिट ने व्हाइट ड्वार्फ्स के अध्ययन को नई दिशा दी। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, तारकीय भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स, अगस्त हमें विज्ञान के इन विविध क्षेत्रों के महान वैज्ञानिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। इन सभी वैज्ञानिक यात्राओं में एक भावना समान थी, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा प्रश्न पैदा करती है, प्रश्न अनुसंधान को जन्म देते हैं और अनुसंधान मानव ज्ञान को आगे बढ़ाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा ये अंक। ये अंक आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र का अंशदान था। वाचन अंजलि श्रीवास्तव और अभिनव प्रज्ञ पांडे। प्रस्तुति अभिनव प्रज्ञ पांडे।

आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री श्रेयस नारायणन

0: आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं। वे अपनी प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंत रामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पीएस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया। कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं। अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वायकम एन गोपालकृष्णन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री श्रेयस नारायणन। श्री श्रेयस नारायणन इज अ टॉप ग्रेड कर्नाटिक वोकलिस्ट ऑफ आकाशवाणी, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshitar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M. A. Venugopal and late P. S. Narayana Swami, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Shri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program, he will be accompanied by Srimati S.R. Rajashree on the violin, Sri A. Balakrishna Kammath on the mridangam, and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam.
0: Sri Shreyas Narayanan apni gayan ki shuruaat Sant Tyagraj ki kriti Ninnada Neela se kar rahe hain, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद कृति निन्नाड नीला, अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग कन्नड़ा सेट टू आदि ताल।

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरंग द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: The next item is ताये त्रिपुर सुंदरी in the राग शुद्ध सावेरी set to खंड चापू ताल, composed by पेरिया स्वामी तूरंग।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथी, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तन्यावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashree on the violin, Shri A. Balakrishna Kammat on the mridangam, and Shri Vaikim N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नबीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देश भर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाएगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बलों और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैन धर्म भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जैन परंपराओं और विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशों से भगवान तीर्थंकर की 20 से अधिक चोरी हुई प्राचीन प्रतिमाओं को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तंत्र श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य महत्वपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने वाला दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो AI से तैयार किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन मिंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है और कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the newly appointed national office bearers of the BJP at the party headquarters in New Delhi this evening. Besides BJP President Nitin Naveen, the meeting was attended by the party's national vice presidents and general secretaries, among others. The Prime Minister said in a social media post that organizational meetings are all about new ideas and perspectives aimed at strengthening the party and deepening connect with the people. He said it was a great interaction with fellow party colleagues and the new organizational team. Earlier, BJP National President Nitin Naveen held a meeting with the newly appointed National Office Bearers.